0: धनास्मु वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यो कलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर गर्न मदद गर्दै आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसिपाटी
1: संपर्क नंबर 9803623382 9803623387।

0: सवारी साधन को इंजन और चेसिस रोकने संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरीद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजन र चेसिस को अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरीद बिक्री गर्नका लागि यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: उत्तर प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराट नगर।
2: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
3: होंडा का विशेषता
4: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
3: उत्कृष्ट माइलेज
4: राम्रो रिसेल मूल्य
3: टिकाऊ र भर पर्दो
4: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
3: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
4: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
3: हाम्रा सेवाहरू
4: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटरहरू कम्पनी के मूल्य में पाइने
3: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
4: एक्सचेन्ज गो सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
3: अनलाइनबाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
4: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुञ्जाङ ओखलढुंगा।
3: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842808300।
0: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशोक लिने र दिने गरौं कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना नदेऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याच नीति गुणस्तर यकीन करी मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु वा सेवा को प्रयोग कुनै हानि नुकसानी भए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौ निष्पक्ष तथा तथ्यपरक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगीमा स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित मा जारी सन्देश।

0: ब्रांड
1: के तपाईं झाड़ कम्मर घुड़ा गर्दन दुख्ने समस्या यूरिक एसिड बाथ रोग नशा संबंधी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीड़ित हुनुहुन्छ
2: यस्तै समस्या को आयुर्वेदिक पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचार का लागि बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय मार्फत को आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई आज सम्झनुहोस्
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओपीडी सेवा
1: विशेषज्ञ ओपीडी सेवा
2: निशुल्क औषधि वितरण
1: सशुल्क फार्मेसी सेवा
2: फिजियोथेरापी सेवा
1: अकुपंचर सेवा
2: योग परामर्श सेवा
1: क्रियाकल्प सेवा
2: पूर्व कर्म पंचकर्म सेवा
1: क्षार सूत्र सेवा
2: जलौका सेवा
1: अग्निकर्म लगायत अन्य विभिन्न सेवाहरू
2: प्रयोगशाला सेवा बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म
1: विस्तृत जानकारी का लागि
2: आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय बागमती करिडोर कैलीगाउँ काठमाडौँ फोन नम्बर 01-4110-6690 98514-2463

0: 프레스텔리에르입니다. 이스타도 도시의 예술에서 함께 빠지도록 하자.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग जिन व्यक्ति जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य का क्रम में मथिलो सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो खेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटने गाय वस्तु चढ़ाने तथा आवत जावत करने पूर्व स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर जोखिमुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानु आशा बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुधीर जिन बेसी उपभोक्ता समिति बचाऊ बचाओ यौनसन्नी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनसन्नी हिंसा को जोखिम में होने सक्शन हिंसा समिति असंतोष साथी परिचित नदी अभिभावक ने आपका छोराछोरी को व्यवहार ख्याल राख बाल बालिका को चाल चलन बाली बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग होने सकते पाई उन्हींसंग तत्काल पूरा करो बाल बालिका सह नियमित संवाद होने कराओ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

यो बा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दूतकोशी को समृद्धि मध्य दूतकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु को सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहार सांज 7:30 देखि 8 बजे समय सुन्न एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: यो बा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध माप्य दूत कोशी समावेशी विकास आधार उत्पादन रोजगारी र पर्यटन
1: तवारी सब

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको डिजिटल बजारबाट फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजाई ओखलढुंगा।
1: संपर्क नम्बर 0375902222 9852988022 र 9842880300।

0: न्यू स्टार कलरिया तथा सोलामाई अक्सिड प्रिंटिंग प्रेस फुलो खुम्बू नगर पालिक पास कलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखि ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलरिया तथा सोलामाई अक्सिड प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब हमारा सेवा प्रेस संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो ऑस्ट्रेलिया सर्विस गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट सफाई करटेशनरी का सामान होलसल मूल्य में पाइन बीपीआई कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल तार पाइन सीपी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण सीपी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवेवन मुहाने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसल मूल्य में बिक्री वितरण हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा चेस्किनी पाल्छा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपी ढूसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्छ भने ये सब मरम्मत र गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर कर सुनेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसल मूल्य में बिक्री नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203399 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सल्लेरी सुनखुम्बु
1: हाम्रो के दोष सर पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएका त होइन सर
2: केही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टै जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिनकै बाबुआमालाई पक्रिनु न सर हामीलाई छाडिदिनु
2: तिनका बाबामा पक्राउ परिसक्यो ती त अब 3 महिना जेल बस्छन्
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ अब यसरी बाल विवाह गर्न दिन्न सर गाउँ घरमा एकपटकलाई छोडिदिनु सर
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन बाल विवाह गराउने लौनीदेखि जन्तीसम्मलाई 1 महिना कैद हुन्छ भनेको छ अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन अदालतले गर्छ चुप लगाएर बस्नुहोस्
0: बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी नेपालको जनहितमा जारी सन्देश बाल बालिकालाई उचित समय दिने र उनीहरूसँग घुम्नु हुने बानी बसालौं
4: उनीहरूसँग प्रविधिले ल्याएको सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावहरू बारे छलफल गरौं
0: बाल बालिकालाई उचित शिक्षा संस्कार र समय दिने हामी अभिभावकको दायित्व हो
4: उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउने क्षमता विकासमा हाम्रो मद्दत आवश्यक पर्छ
0: बाल बालिकाको जिज्ञासु स्वभावलाई झर्केर होइन सकारात्मक सोचका साथ समय दिएर सम्बोधन गरौं
4: माया र सद्भावले मात्र बाल बालिकालाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ
0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा। होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइनबाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
2: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852288002 र 9842380300।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्तल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई उखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842808300

0: check. Sorry, FM. It's studio time.
1: It's 4 p.m. Aparanna ko 4 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चुकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0 37 590 222 98 52 88 0 222 र 98 42 80 30 00
0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चुकिया
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुके मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0 37 590 222 98 52 88 0 222 र 98 42 80 30 00 Thank you.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 p.m. Start to start with.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CNN. Seamless browsing with single internet. Of the

0: सोलु एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sunset. Sunny afternoon. It's studio time.
2: It's 8 p.m. Rapko 8 baje.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा भरामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को स्नान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस अहिले तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ अब प्रस्तुत छ आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः